आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सबसे तुरंत बाद सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 240। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इसका पांचवा भाग आज आप सुन सकेंगे। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोणु मजुमदार, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी, आलोक एवं आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक राजकुमार संतोषी पर। संवादक हैं यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता

रमेश गोखले। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग सुन सकेंगे प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 बजे रात्रि 11 बजे से विविधा, इसके अंतर्गत भरत व्यास, चेतन आनंद और मोहम्मद अजीज की चर्चा। दिन में 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 बजे से सुरीला सफर, दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी,

दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे मनचाहे गीत सुन सकेंगे। दोपहर 3 बजे से 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक मालविका अग्निमित्र की मालविका अग्निमित्र का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे। मूल संस्कृत नाटक महाकवि कालिदास की है और हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतर एवं निर्देशन चिरंजीत का। पिटारा शाम 4 बजे से, इसके अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत रीमा अमरापुर पक्कर से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। शाम 5 बजे से आप सुनते हैं छाया गीत का पुनर्प्रसारण, तराने नए पुराने शाम 5:30 से। संध्या रंजन ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:35 से। विशेष जयमाला शाम 7 बजे से, इसके अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत सुनिएगा असिस्टेंट कमांडर रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज।

रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका बहादुर की शादी, लेखन हरि मेहरा की, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। रात 8:15 से चित्रलोक आपके लिए ये कार्यक्रम सुन सकेंगे। रात 9 बजे से छायागीत सुनेगा। रात 10 बजे आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 से और विविधा रात 11 बजे से। आपको याद दिला दें कि रात 9:30 और सुबह 9:30 से ही आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक राजकुमार संतोषी पर। संवादक हैं यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला की आज पांचवी कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं और रोनू दादा हमारे

0: साथ स्टूडियो में हैं। रोनुदा, आज के इस कड़ी में हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत के महारथी, बांसुरी के महारथी, फिल्म लाइन में आप कैसे आए? और हमने तो सुना था कि कोई रेडियो कॉम्पिटिशन था जिसमें आप फर्स्ट आए थे।
1: जी,
0: वो तो शास्त्रीय रचना थी, फिर फिल्मों में कैसे?
1: मुझे तो अपने ऊपर विश्वास नहीं था।
0: हाँ।
1: क्योंकि मैं 17 साल का था
0: जी,
1: मगर मेरे गुरुजी को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि जाके फॉर्म भरिए। पंडित विजय राघव राव जी ने कहा कि भानु दादा के नाम से प्रसिद्ध थे वो।
0: जी जी जी।
1: फॉर्म भरिए, तो मेरे पिताजी ने बोला कि वो इस लायक तो अभी नहीं है। बोले कि गुरु आप है या मैं हूं।
0: वाह।
1: उस दिन मुझे गुरु की अहमियत मालूम पड़ी और पिताजी चुप, एक शब्द पिताजी उनके ऊपर बोल नहीं पाए। मतलब पिता से भी अगर कोई बड़ा है तो वो है गुरु। क्यों गुरु बड़ा है? क्योंकि गुरु जब ज्ञान दे देता है तो गुरु अगर नाराज भी हो जाए तो वो ज्ञान वो वापस छीन नहीं सकता।
0: बिल्कुल।
1: पैसा तो छीना झपटी करके छीना भी जा सकता है, ज्ञान कैसे वापस लेंगे? इसीलिए इतनी बड़ी चीज वो आपको दे रहा है कि जो वो खुद भी चाहे तो वापस नहीं ले सकता। तो पिताजी ने फॉर्म भर दिया गुरुजी की आज्ञा से और मैं फर्स्ट आ गया। और उस जमाने में साधना सरगम मेरे साथ कंपटीशन में बैठी थी गाने के लिए।
0: क्या बात है।
1: तो बंबई से हम दोनों ही फर्स्ट आ गए। साधना उन दिनों मेरी पुरानी दोस्त है, एक बहन की तरह है, और वो पंडित जसराज जी से सीखती थी, ये कई लोगों को मालूम नहीं है
0: जी।
1: तो हम दोनों फर्स्ट आ गए। तो उस जमाने में जो फर्स्ट आते थे उनका कार्यक्रम भी ऑल इंडिया रेडियो में रखा जाता था
0: जी।
1: हम लोग पहुंच गए और माधव राव इंदौरकर जी बहुत बड़े तबला वादक थे
0: जी जी।
1: तो माधव राव इंदौरकर जी ने मेरी संगत की
0: जी। किस आकाशवाणी केंद्र से आप ये फर्स्ट आए थे?
1: बॉम्बे से।
0: मुंबई से।
1: हाँ
0: जी।
1: मगर उस जमाने में कम से कम 15 से 20 बांसुरी वादक उसमें आए थे, जो कुछ मेरे से सीनियर भी थे। फिर भी मुझे पहला नंबर मिला
0: जी।
1: और वो मेडल ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथ से मिला।
0: जी, जी।
1: मजे की बात ये है कि सुनने के लिए जो श्रोता लोग आए उसमें रविंद्र जैन भी आए।
0: क्या बात है। वाह।
1: और रविंद्र जैन जी, उनके बात करने की थोड़ी शैली मैं बता रहा हूँ, सुनो बड़ा अच्छा हो जाए तू जरा मेरे पास। हाँ हाँ। वो तो सूरदास थे
0: जी,
1: तो हाँ बड़ा अच्छा बजाता है, कल मेरे रिकॉर्डिंग में आ जा।
0: जी जी।
1: रिकॉर्डिंग के लिए पूरा बांसुरी का सेट होना चाहिए, 24 बांसुरी होने चाहिए कम से कम।
0: जी जी।
1: उससे ज्यादा एक दो और भी बेस का हो तो अच्छा है। डी से डी तक जाएंगे और अगर क्रोमेटिक में जाएं तो 7 स्वर नहीं है, 12 स्वर है। और डी के बेस से डी के मिडिल तक आइए, डी से मिडिल से लेके एकदम जो छोटी, जो कि 4-5 इंच की डी की छोटी, जिसको मुरली कहते हैं, वहां तक का बांसुरी कम से कम आप स्टूडियो में। मेरे पास तो 3-4 ही बांसुरी, वही लेके मैं पहुंच गया।
0: और स्वर सप्तक भी कुछ होते हैं, इतने स्वर सप्तक की बांसुरी होनी चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि जो डी बड़ा है वो मंद्र का है और डी से छोटी वाली वो मध्य है, और उसमें मध्य में जाएंगे जब ऊपर के साथ तो फिर तार सप्तक हो गया। 3 सप्तक की बांसुरियां आपके पास होनी चाहिए।
0: जी जी।
1: वो कुछ नहीं मेरे पास, मैं तो पहुंच गया रेडियो जेम्स स्टूडियो और वहां मेरे भगवान गा रहे थे,
0: किशोर दा
1: गा रहे थे।
0: क्या बात है।
1: ना जाने जब कैसे मिल जाते हैं जैसे, ये गाना, पहले नजर में तुम मुझे भा गए, ऐसा दादा गा रहे थे कि मेरे आंखें से पानी निकलता जा रहा है कि ये स्वर का बादशाह जिसको मैं बचपन से सुन रहा हूँ वो लुंगी कुर्ता पहन के गा रहा है मेरे सामने।
0: जी, जी।
1: वो बस जहां मैं बैठा हूँ आपके सामने, इतना छोटा स्टूडियो है रेडियो जेम्स।
0: जी जी।
1: और मेरे पास जो बैठ के तारशाना ही बजा रहे थे वो थे दुखी बाबू, इंडस्ट्री में उनको दुखी बाबू कहते हैं, पूरा नाम है दक्षिणा मोहन टैगोर।
0: जी जी।
1: और मैं था इतना पतला दुबला कि आप कल्पेश को देख रहे हैं, ये भी मेरे सामने मोटा है।
0: जी जी जी।
1: इतना पतला, आप मेरा फोटो किशोरदा के साथ देखेंगे तो मेरे वेबसाइट में है तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे मेरा बेटा कोई है। तो वो दुखी बाबू मुझे बोले कि तू कौन है, और मेरे छाती को उन्होंने अपने हाथ से नापा, इतना बड़ा हाथ, बोले खाक तू बजाता कैसे है, तू खाना नहीं खाता है?
0: अरे
1: मैंने बोला मैं खाता हूँ, बंगाली में बोले खबर खास ना तो की चोरी रही अवस्था, पेट पूरा अंदर रहा और बहुत ही पतला था मैं। तो वो अपने घर ले गए, मछली चावल सब खिलाए, वो सोचे कि ये खाया ही नहीं है, हालांकि मैं तो खाया हुआ था मगर 17 साल के लड़के को तो फिर से खिलाओ तो फिर खा लेगा वो।
0: जी, जी,
1: तो मैं फिर खा लिया। वो एक होटल में रहते थे, उस होटल का नाम मुझे आज भी याद है, मानसरोवर होटल।

0: बोले कल आ जा सुबह, तब 9 बजे का शिफ्ट होता था और मैं सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन का मेंबर तो था नहीं, तो मुझे फाइन भरना पड़ता था 10 रुपए उस जमाने में।
1: अच्छा, बहुत बड़ी कीमत थी 10 रुपए।
0: 10 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। वो रविंद्र जैन के वहां भी फाइन लिया मेरे से और 140 रुपए पेमेंट था, जो काफी था। ए ग्रेड का पेमेंट मुझे दिया, ना होते हुए भी बांसुरी से इतने खुश हुए। दुखी बाबू मुझे ले गया, पहली बार मैं फिल्म सेंटर में गया और वहां पे लता जी खड़ी है, अमित कुमार खड़ा है और 100 पीस ऑर्केस्ट्रा और वो 40 वायलिन सिम्फनी की तरह और चेलो और डबल बेस अपराइट बेस जिसको बोलते हैं, वो सब वेस्ट इंडियन जैसे दिखते जो हैं वो डबल बेस वही लोग बजाते थे, क्योंकि वो चेलो से भी और भी बड़ा साइज का होता है, खड़े खड़े जो बजाते हैं। बाद में बेस गिटार ज्यादा बजने लगा, पहले तो डबल बेस बजता था।
1: जी जी।
0: और पंचम दा ने 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। पंचम ऐसे ठहाका लगाते थे, देख किसको लाया हूं। तू बोलता था ना हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास टाइम नहीं है, वो क्लासिकल प्रोग्राम में बजाने लगे हैं आजकल। तब हरि जी भी नए थे और वो जो टाइम बचता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास चले जाते हैं।
1: जी जी।
0: तो ये बांसुरी वाला ही लाया हूं मैं पंचम दा। वो फिल्म सेंटर में अंदर सचिन देव बर्मन का एक ऐसा गाल में दोनों हाथ रख के एक फोटो आज भी है, ले गए और मुझे बोले तुझे नोटेशन लिखना आता है, बंगला में बोले, तू नोटेशन लिखते जानिस? आमी बोललाम हाँ दादा मैं जानता हूँ। तूने बैकग्राउंड म्यूजिक कभी बजाया है? मैंने बोला नहीं, मैं तो एक ही फिल्म में बजाया, वो कल बजाया था रविंद्र जैन का। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे राग खमाज आता है?
1: अरे।
0: बोले खमाज सुना दे। जब मैंने बनारसी अंदाज से खमाज बजाया, गले लगा लिए मुझे।
1: क्या बात है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन

0: व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @AIRNewsHindi

0: को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: और हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है, साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme, Viksit Udaan, in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
1: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान

0: আধুনিক গান শুনলেন, শিল্পী ছিলেন সাধনা সারগম, আকাশবাণী কৈলাসহর, এখন আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি এবং ইংরেজি নিউজ বুলেটিন রিলে করে শোনানো হচ্ছে। এরপর শুনবেন মুম্বাই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के इलाकों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू हो जाएगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में

सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है देवी श्री प्रसाद ने।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं मोहसिन शेख, ज्योतिका टांगरी मेलोडी और ऐश्वर्या भंडारी की। दानिश साबरी ने लिखा इसे और संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

दोस्तों, आज के चित्रलोक प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से। आवाजें हैं विशाल ददलानी, हंसिका अय्यर की, और इस गाने का तमिल रैप का अंश गाया है श्री चरण कस्तूरी रंगन ने। बोल है अमिताभ भट्टाचार्य और निरंजन अयंगर के, संगीत विशाल शेखर का। तो मैं कहता हूं आपसे, लेट्स गो ना ऑन द डांस फ्लोर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम चार दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर लो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

करना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्ध सत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

ट्रायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कहानी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 19

कुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

फिल्म पुकार के बाद साल 2001 में वो लेकर आए महिलाओं से जुड़े विषय पर एक बड़ी ही प्रखर फिल्म लज्जा।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष भूमिका में थी।

लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के

कूना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sound, camera, action.
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
3: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती
2: है। बिल्कुल।
3: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी। वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
2: हाँ, हाँ।
3: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
2: बिल्कुल।
3: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
2: हाँ।
3: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है
2: जी।
3: दोनों गाने वही थे।
2: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर
3: नहीं
2: थी कि चुनरिया पर ही
3: नहीं, नहीं, नहीं। मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
2: आपस का
3: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा जो आप टाइप की बात कर रही हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं तो 5000 चुनरिया तो नहीं है, और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। सातवीं फ्लाइट में थे।

0: लोग,
1: हाँ
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बैल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो
1: सर,
0: जगह ही रहता था
1: अरे
0: और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के। हाँ ना भाई साहब, इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया
0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: वो
0: तो
1: कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था, इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने
0: जी
1: कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए।
0: जी
1: इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नय्यर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा।
0: ये सारी फाइलें जो है ना, वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहां तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए, दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का
1: जी
0: अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी जी
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूं। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, अरे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूं। और तो करना मैंने कब मना किया है? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे
0: हाँ
1: क्या बात है।
0: बोले लिख लेना, कोई बात नहीं, उसमें
1: हाँ
0: क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया। और मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना
1: मानना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी, मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंद्र जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले, अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंदर जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: सही
0: देखिए
1: बात है।
0: रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं
1: जी
0: सकते।
1: जी जी
0: तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा।
0: और कश्मीर का राजमा है, एक
1: अरे
0: प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
1: हाँ
0: हैं,
1: भूख
0: भूखे
1: लगी
0: प्यास लगी
1: होगी।
0: होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन
1: बहुत
0: बिना खाए उस रसोई से भाभी ने

0: उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब।
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ।
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूं।
1: अच्छा
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूं। वो मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला, क्या सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप? मैंने क्यों? तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा
0: मैं बेचैन हो गया। हमने कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूं ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया।
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है, मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा? बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सिलेक्ट हो चुके।

0: अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा। मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। मैंने कहा ये शॉट यहां से हटा दीजिए आप, और इसको यहां लगाइए और इसको यहां लगाइए
1: जी।
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं। देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा।

0: वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है,
1: अच्छा धरती की हलचल।
0: हलचल, और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है, ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का, और मैंने गाने लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार
0: अब
1: विजू
0: पहली
1: शाह।
0: बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था, तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना,
1: हाँ
0: दावा नहीं कर सकते अपन।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मेरा ठीक है,
1: ओहो।
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ
0: मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेज को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो
1: ओ
0: ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था।
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना
0: और
1: बनती
0: मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ,
1: है।
0: ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और
0: जी
1: कहीं
0: जी
1: हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें, ना जानने को
0: जी
1: मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे। आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके
0: जी
1: बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो जो मैं गा रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। वो ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा
0: साज उनका मोहताज है,
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: ये गीत की कहानी ऐसी है
1: हाँ
0: कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे गाड़ी में बैठे हुए,
1: हाँ हाँ
0: तो मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो।
1: हाँ हाँ
0: मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार, ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो।
1: बर्दाश्त।
0: फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
1: बिल्कुल।
0: बोला मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के कितने हैं?
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है,
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब।
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने
1: एकदम
0: तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है,
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक है, और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: एक नया लड़का है उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अनु मलिक जी के यहाँ से बजा के ये म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचमदा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म, ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
1: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, तो कैसे मिला
0: था? तो कमाल है, आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और हूं और आगे भी रहूंगा,
1: रहेंगे।
0: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं। क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के, तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
1: जी जी
0: लक्ष्मी जी थे, प्यारी जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशि लाल नायर, कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है।
1: अच्छा।
0: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन, तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी भी कही है या रफी साहब की चाहत थी क्या थी, कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं ना, प्रिट नेम है, बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है। तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
1: जी,
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर, इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं, क्योंकि रोज का काम है उनका।
1: जी, जी।
0: वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एकदम सन्नाटा छा गया। वो
2: न फनकार तुझसा

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता था जब आप गाते थे? तो
1: बहुत इन्वॉल्व, गाना जब बनता था ना, जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया हो? अच्छा
1: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या
0: जी।
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को
0: जी,
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें मिला के अमिताभ बच्चन है।
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
1: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए
0: जी,
1: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया
0: जी, जी।
1: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ।

0: बात हो गया
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था।
1: मैं एक दफा गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई एल टी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था
0: जी,
1: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए नए लड़ जाई है सब
0: जी,
1: बिहार का सिचुएशन देखकर पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब, जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला। देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो।
0: अच्छा,
1: वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर। और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अधनायक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज दे कहाँ है और गाने के बोल है रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अन्नू मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा, इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं। एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी जी,
1: नात मन कवच जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी,
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है।
0: अच्छा,
1: वो सारे हनुमान चालीसा सारा टाइटल भी आपने सुना होगा, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल पूरा चौपाइया दोहे जो जो थे वो सारे वो सब मैंने गाया। मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
0: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है, और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए।
0: अच्छा,
1: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं
0: जी,

0: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो उसमें 4 सिंगर है, तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं 4-4, 5-5 गाने एक फिल्म में गाता था
1: जी।
0: आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2-2.5 हजार है और 4 हजार के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने
1: जी जी,
0: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10 हजार के ऊपर गाने हैं मेरे।
1: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
0: 17 या 18।
1: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
0: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब के रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते हैं।
0: मगर मनीषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस आएंगे विविधा का अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को, आपके मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार रिले करेंगे।
3: শুনছিলেন মুম্বাই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান আকাশবাণী কৈলাসহর। শ্রোতাবন্ধুরা অনুষ্ঠান শুনছেন 103.2 মেগাহার্টজে আকাশবাণী কৈলাসহর কেন্দ্র থেকে। স্টুডিও গড়িতে সময় বেলা 12:28। শ্রোতাবন্ধুরা, জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের চলতি অধিবেশনের পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচি। বেলা 12:05 শুনবেন ছোট্ট সোনামণিদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান শিশু মেলা। 12:30 লাইভ ফোন ইন হ্যালো অনুরোধ। দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ বেলা 1:00। 1:30 আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে বাংলা সংবাদ রিলে করে শোনানো হবে। মা বোনদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান মহিলা মহল 1:40। বেলা 2:00 দিল্লি কেন্দ্রের ইংরেজি সংবাদ রিলে করে শোনানো হবে। 2:15 আধুনিক গান, শিল্পী রূপঙ্কর। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবেন 2:30, শিল্পী হলেন স্বাগতলক্ষ্মী দাশগুপ্ত। 2:45 শুনবেন

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित

0: पंचायत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদের পর আমরা আবারও ফিরে এলাম এলোনুরোধে। শ্রোতা বন্ধুরা শুনছিলেন জহরলাল বর্মন শ্রোতা বন্ধুর পছন্দের গান আলাগ আলাগ ছবি থেকে।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरल के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश

0: राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जेनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today released the first installment mother sanction of over 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of VBG Ramji with rural development ministers of all states and union territories. He said that the first installment released today is aimed at ensuring the states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days.
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे।
3: It took 3 years for MG Narega to be implemented across the country, but I am proud of all of you. Unlike MG Narega, the Viksit Bharat G Ramji Yojana was rolled out nationwide on its very first day. The scheme guarantees 125 days of employment instead of 100 days. If more than 7.5 lakh crore rupees is utilized effectively over 5 years across 2.86 lakh gram panchayats, every village can be transformed into a prosperous and fully
2: समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material in paid ads on social networking site Instagram. Official sources said government has ordered Instagram to disable all ads and content promoting and facilitating access to abusive material. Ministry of Electronics and IT has demanded a detailed explanation from Meta within 7 days. The government is reviewing whether the platform has complied with India's intermediary safety guidelines. Distribution of pornography and child sexual abuse material is a criminal offence in India under the digital laws. Prime Minister Narendra Modi's visit to Indonesia beginning tomorrow will give impetus to the existing relationship between the two countries and will also open up new areas of cooperation. In an interview to Akashvani in Jakarta today, Mr. Sandeep Chakrabarty, Indian Ambassador to Indonesia, said that during Prime Minister Narendra Modi's visit to Indonesia from 6 to 8 July,

0: तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से, आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपकी पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो।

10 नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाले ये बताएं। इससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू साजन के मास्टर शिवांशु ऋषु अभिषेक नायडू दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन नईमा बेगम कासिम अली नदीम अली और जुनैद अब्बासी आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छांटते छांटते हमें मिली एक ऐसा पोस्ट कार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

अब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंकी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है, सौदागर फिल्म के लिए ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है छाया गीत में। तुम्हारी हसीन यादों का सफर अक्सर मुझे भीड़ में भी तन्हा कर देता है, फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। तपता रेगिस्तान भी मुझे ठंडी झील सा लगने लगता है और मैं एक मुसाफिर सा उसके किनारे बैठकर तुम्हें सोचता हूं। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। जिंदगी जब थकाने लगती है तो तुम्हारी खुशबू का असर कुछ ऐसा होता है कि हर रास्ता छोटा लगता है, हर मंजिल आसान लगती है। मैं चल पड़ता हूं फिर से उठकर तुम्हारी उसी खुशबू और खूबसूरत याद को आंखों में समेटे।

एक रंग तुम्हारी निगाहों का, एक रंग तुम्हारी अदाओं का, एक रंग तुम्हारे लबों का, एक रंग तुम्हारे गालों का। उस रंग में रंगी हो तुम, उस रंग में रंगा हूं मैं, उस रंग में रंगी हैं हसरतें हमारी, उस रंग में उलझी हैं जुल्फें तुम्हारी, उस रंग में रंगी हैं ये वादियां, उस रंग में खिली हैं कलियां। कहते हैं उसे रंग इश्क का, कुछ मदहोशी का, कुछ सुर्ख सा।

आंखों से खींच कर तुम्हारे दामन को, तुम्हारी एक एक अदा को पलकों में कैद कर लिया। तुम्हारे हुस्न के साए में है अब मेरी मंजिल, तुम्हें देखकर तुम में ही मैं जी लिया। जब भी शाम आती है तुम्हारी खुशबू सी महक जाती है, जब भी सुबह होती है तुम्हारी सांसों में धुल जाती है। कभी मोहब्बत की आहटों सी तुम गूंज उठती हो, कभी मत भरी शामों सी बहक जाती हो, कभी गुनगुनी धूप बनकर सहला जाती हो, कभी चांदनी बनकर धड़कनों को बहला जाती हो। पास आती हो तो जिंदगी बन जाती हो, दूर जाती हो तो बंदगी बन जाती हो।

ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

पुराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म क्रांति से।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

0: बुझी यारनि कग्रो नबो
1: नों बाहेखे आंनि गालिबारि फायाव मोन बा नोंनि टाका मायादा
0: दिनै गालिबारि गुबैदो
1: इख' सायमाहाय उंसाय दंनाखाय बा दाबुखाय
0: गुबैनो यार सावैमान जाबाय ए आं तुर' थांमानि दालसानसे बिसि ओं थांगा दिनैसो दिहुनि फायो नगद थांफा आंबा कबरदा नों गालिबारि फायांनानि नों गालिबारि फायांगा दै सामने आरो फायसिनानि पुरु बसु बालु खासलाय नों गालिबारि माने
1: आरो मेरासो फायो गालिबारिनि सामुं निने मारा बायखे कग्लाम लोकसे सालायाखौ
0: बिहांसिलाय मारेखे बिहांनि
1: हिन्दी थ' फायसिनि बायदि सिनि दामाल न
0: बर' बर' बर' थानानै दाबो
1: दे बर' सिलाय आंनि नगनता निनु मारे कथाल न सिनि दामाल सिनि बायदि हिन्दी थ'
0: ओह यार तिनि सानियाखौ तिनिआसो हासिल फायमानि
1: यार कक सिता सादे हिजि हिन्दे
0: ओ आबो
1: कक सिता सादे यार खुदै बेग बेग खुदै आं थियान हिन्दी सिनि
0: राय नों वाय बहाय
1: मारे कथाल न सिनि दामाल सिनि दाया
0: दाखोन आगे खाना आं फुङाय दामे करि मा किफिल नाय फिया
1: खाना नि खाना बानता
0: आ जाखोन हिन्दी
1: हापाय दे हापाय दे यार आसुक दि गौरन छेर
0: आसुगन आं बतम न आसु आं आसु न बगि थे वानाय तो नि नार बां तिनि पुइला फायमे या गय बिको मारे क तल्ले बरसला
1: तम हो या बनो बानी काम जदि जेबो से सब किपका बतै बरक मासिना गांधी नगर गंग ना ता फायन
0: दो निहिन नै दिखाय
1: ओह आले निहिन नियाखौ आगोन गदाल खबला नो तम सुग्रा दिया आं दा सम्रायनि हाथिनि मानै कसारि हरमानि गिजा थुनै रिग्राना आसुक सग्रा दे आं थाबुं न फाइस बयान निनि मारे कथा तुमुं हाफायगेबा कगलाम लक सालाय तुमसु दिदा
0: आबुन ता कक नों सखा सिनिरि याय मारे कथा बां कक सालाय दोराखै हे
1: आहा नायगना न बा नों साख साख सिनि दामान न सिनि माया खबा आं बा फाइगला दिबा
0: दाखोन द थान फाइग्रा दिया ओ सावसलाबो हले मारे कथा ल हाफायखना बा कताल हिंद्रे हाय बखरो दि रखा पंगो सिनेमा याका फाइजाकु कताल हिना दिके फाने नांहे
2: सुमन
3: पुनि न सादि नों सजे पुनि दा सादि सादि आंदा सिनि कर सादि पुनि सादि नों तुं पुनि हिके बाइक कर सपय के सादि पुनि
2: नों न वान सुंग ना सिदिता बाइक के शक फाइका
3: याबुंग या पुनि आबुंग या आं नों खिबि नों याकरि हाव बासि तं मंगला पुनि आं बासि तं मंगला
2: आति कक्त सादि आं बुनि बिहिक सावि माया दा बुनि बिहिक रग बाय आथि खाय दा कक साबा बुइखनाय ताम हिनानि
3: आं खनाथुन बुइ आं इहानि बरन सिरखौ सानाय पुनि आनि सुरानि सिमिन तै केबनिया आनन पोंना हनि दे सुरिना थांमानि से बगै माया किबिलि फायो सुरिनि नि बागै न सुरिनि नि बागै सिमिन पुनि आनन आनि जागो थियासनि बागै आनि जागो मानना हनि किबिलि फायो
2: नों किबिलि फायमानि किता लेरि थांका सुमन ताबु खलायनानि कुस्ताम लामा करि खा
3: तामुगि लामा करि नै हिन्दी थ हिन्दी ताबुनो आंना तलांग अरन खारि थानाय हिन्दी ताबुनो हिन्दी पुनि
2: आबो भाइ गयंग नै
3: तामुगि गयंग नै न आन हामजाय देबा
2: ताबु कक कक न सोंगै तामु खलायसि नै आं ताबु बुइनि बिहि अकक न नों तामुगि बानसु गया आगि तामु खाय थ
3: आव आनि न चालिया पुनि अकुर आं खा खलाय मानि नन किबो इ हबासि तंगमान न हनै बरबा तीन पुनि मकल टुंफ्रु मकल गुण सिया आंनि बागै कबर हागि किबिलि फेमासि नन ताव आसुंसा बुनि हि कैनगै आंनि जिनो तै रमै नारग मालिया पुनि आनन किबि बाथि टंगमांगला बाथि टंगमांगला न आन ता बुथादि हिन्दी आं बाय
2: ताबुक ते इंग्लिया सुमन ताबुक नों बाय खारि थांकाय इहानि बररक थियासान छाबै मनि लायनाय मुथि बरगले बुनि बिहिग्न सेतलां खारि थांकाहिने
3: नों ताबु कथारखौ बुनि नों ताबु कथारखौले
2: कथार कथारियानि कय गया सुमन बुनि बिहिक न बकताल फानुंथु गोजाम फानुंथु कपालनि तिलु जगमा लगि लगिन आं बुनि बिहिगि थांका इहा इनखा इताल सल दंसा बिकेब आनुनि हिलिया सुमन नों आनु पबै थांसिदि
3: भाइकि पंगनानि बाइकिस पंगनानि सादि आंथ' पंगनानिनो चेतन नामा बोले आंनोनो पंगना होनै न इहानो याकारि थाङै नायखा आबोसि पगैमाया किबिलि फायो आंनोनो आंनि आगो इहासानि बागानि आगो मानो होनै आसावै किबिलि फेमासि ताव आजोंसा बयनि बिहिखाय नुबै आं दाय निजिनो रमै नारों मालिया पुनि आं ताबो खिथाम खायनाय तामुखै बाथि दंनाय आंनि कंनो नारोंलिया कक सालिया आई के आई के

राज सिंसोहान साखा बीजेपी रामजे केरंग बीसी नईबानो अजुलाई तालनी साल पुलानी सिमी चारि सामूंग फुनांगजाखा भिडियो कन्फ्रेंस ने बीसिंगी अमीसी खबजा हास्टे रकनो तीन बो नईबा रासाई रोजाकनी बो गोबां पुलिया खेपनि रां रोखा अबनि लगी लगी बबेबा खास्टे ताय केन्द्र बाय नाइकलजाक आमसाय रकनि कामि हामक्राय मन्त्री रक बाय बीजेपी रामजिनि सामुं सारै तिसामान तै कक्लाम्ब सालाइका मन्त्री साखा अपुलिया खेपनि रां रोमानि नाहारमुं ओंखा सामुं तांमानि सालसिबानि बिसिं यागुलनि रां रै रोनानि बो ताइबो साखा एम जि एन रेगानो सारै तिसा सुखना बागै बिसिक थामनिबो गोबां जरा नांखा फिया बीजेपी रामजी हाक्तर गनाङै सालसानि बिसुङनो सल खालाय जाखा बीजेपी रामजीनि सामुं तांमनि यागुलनि रां राव सि बांग्रे जाखा ताबुकनि सिमि हाक्तरनि कायसासिक हास्तेव फानो यागुलनि रां खक थामरे थामरानि बांग्या ओंलाक कामि हामकारि मन्त्री साखा अ तांबुतां चारिति साना बागै रांनि मुंसा बियाल ओंलाक स्राय स्राय खालाय सुखना बागै फेस अथेन्टिकेसन जिओ टेगिंग नो खबै कटालको टांगसे फुनां सोखनानि साखा फान रेजाखा भारतनि आसुक फांबाय खोनानि सिमि केरलानि कुसुवा सालनै रमै ब्रिक्स वुमेन्स वार्किं ग्रुपनि पान्डा संसा जागोनो बोरै ताइसराय हामक्राय कक संलायनक साखा ब्रिक्स आदं हाक्टनि हाफांनि उमर गोनां तांफां रक अ पान्डाव मानजागोनो बरक जुदा जुदाव ब्रै रक्न फान गोनां ताइ बरकनि अजा मुंनो तै कग्लाम सालायनो किसासोग बरक नांकुक नांसुकमाव सुबा लाइमा ताइब बांग्रोना तै कक बिदि रक्न अ कग्लाम ब सालायनो पान्डाव नाइकुल मुं ताइ बुरै रक अजा ओंथानि मानजुग मुं बुरै रक्न डिजिटल ताइ रां थङ खपनानि दारा खामारि ताइ नबाटैबार फेरमुंग नाइमोथां ताइ चामुं गाहमो बुरै रक्नि सामुंनो तै कक बिदि रक अ कग्लाम ब सालाय जागोनो ए आइ एबा आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स कमथिंना एबा नाइकल मुंनि याप्रेनो तै राष्ट्रसंघनि फुइला ग्लोबेल डायलग्स ग अमानजाकना बागै केन्द्रनि बुइहा मन्त्री याक्सु कृतिवर्धन सिंहनि अजमाबाय भारतनि आदं बदल कायसा खोना सुइजारलेण्डनि जेनेभाव थांगोनो बुइहा कक संलायनक साखा ग्लोबेल डायलग्स अन ए आइ गभर्नेन्स ओंखा राष्ट्रसंघनि गसिजाक ताइ गोबांमा दायलाइजाक बेरामनि दांसा कायसा जे दांसा जतनि नाइमथानि ककटि सामुं बाय खाजाकमानि बिसि नैसाय नैजिब्रैनि सेप्टेम्बराव फेक अफ द फ्युचारनि बोखाक ओङै ग्लोबेल डिजिटेल कम्पेक्टनि बिसिंग अ साक्थारमुं नाहारजाखा केन्द्रनि पेट्रलियाम ताइ गेस मन्त्री हरदीप सिंह पुरी साखा इथाइल कुनो गोदाल खाकामुंया ताइ अब बिसि सारानि ब गोबां रमै अबनो सामुङो फुनांजागै फायै दङ राजस्थाननि लक' गौथुम लाइमुं कायसा पान्डव मोसां पुरी साखा हाफां गोथांनि मुसों जाखनाय बुलमानि सामुं बुतांनोतै खामुं गोनां ककटि सामुंनो लामसग ब साखा मेथेबै साखा हाफां अबनोतै कक बिदि कक्लाम रक्न बरकनि सामुं बुताङ खपनाय ताइ नांमानि सोनामफिरनाय रामनगर स्पोर्टिं क्लाबनि साक्थारमाबायदिनि बलंतेर कक कतरनि सामुं बुतां रक्न रोखसावै फांसारा कायमानि पान्दानो संसाय रोखा बलं हालं रक्न खाथुवि नारोखनानि अकक्तमानो साहरै रोनानि बागैनो साक्थारजाका अ सामुं बुतां अककनो साखा आगरतला पुर नायख्रायनि मेयर एबा एमएलए दीपक मजुमदार बदाल बिदाल बेरामनि फांसारानो ब कायख्या ताइ जतननो कयख्या गोबांखे फांसारानो कायै बलं हालं रंनो ताइबो खाथुवि नारोखनानि बागै अक्लाबनि ओङै साजाका थिनांग हाइन अमहाय सामुं बुतां रक सयावैनो तंनाय पान्डाव मान्जाखा अक्लाबनि तांग्रा चन्दन चन्द कास्कु बाबुल राय आकसं आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अककटुमा खोनाय दंबायो आकाशवाणीनि अक्टुमानि आपडेट माननानै बागै लग इन खालायदि www.newsonair.com न्यूज अन एयर एप्स ताइ टुइटार बाय फेसबुकनि प्लेटफर्म एआईआर न्यूज एलार्ट युट्युबाव नायदि न्यूज अन एयर अफिसियेल अब आबुनो कारिबो आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अक्टुमा आपडेट माननाखै टुइटार एबा एक्स हेन्डेलाव आकाशवाणी न्यूज आगरतला फेसबुक एआईआर न्यूज आगरतला ताइ युट्युबाव आकाशवाणी

0: कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है।
0: पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDD

डीबी के काफ लैब एवं केएलडीबी के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: মনে পড়ে ছোটবেলায় বাবার সাথে গিয়েছিলাম একটা জায়গায় বেড়াতে।
1: Back to back boundaries, Litchfield on fire as well. Australia not just dominating, they are destroying England's bowling at the moment. It is unbelievable that in a World Cup final, having done the bowling bit, the Australian batters now just pulverizing the opposition with their super aggressive stroke play, and they have made the England bowling look very, very ordinary indeed. Here's Bell again, bowls, and this time on the stumps, not able to beat the fielder at mid-on. And the total stays 96 for 1. 55 runs required for Australia to lay their hands on a seventh title and stop the drought of silverware, ICC silverware that is, that they have had for the last couple of years. Here's Bell again in bowls to Litchfield, who's wristily driving it to wide-ish mid-on and will steal a single in front of the fielder coming in from there. 97 now for 1. Litchfield 39 and Beth Mooney on 41. So these two really taking the attack to England. Great footwork, intent very obvious, not afraid, brave cricket. And as they always say, never judge a pitch till two teams have batted. Australia making this pitch look like a very good batting wicket, while England certainly struggled, and that's credit to Australia's bowlers. Here's Bell. Slower ball, cracked away into the deep cover region for a single by Mooney. She'll go to 42, and that is 10 overs bowled, 98 for 1.
2: स्पोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: जीत की ओर कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल ये नहीं लग रहा सबके जहनों में कि वो जीतेंगे या नहीं, सवाल ये है कि कितनी जल्दी जीतेंगे। तो अब सवाल ये भी है कि अब चैंपियन टीम वही होती है जो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले, और ऐसा नहीं है कि पिच कोई बहुत ज़्यादा बदली है। कई बार अपने को

0: बदलना पड़ा है, इंप्रोवाइज करना पड़ा है, अंतिम समय में स्ट्रोक को बदलना पड़ा है ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को। डाइव लगाते हुए बॉलर से छिटकी गेंद अपने फॉलो थ्रू में अपनी बाईं तरफ जाती हुई स्मिथ ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। एक रन मिल गया ऑस्ट्रेलिया को 99 पर। ये 11वें ओवर की पहली गेंद है। 100 रन पूरे होने जा रहे हैं, जीतने के लिए चाहिए 151, यानी कि अब 59 गेंदों पर मात्र 52 रनों की आवश्यकता है 7वीं बार T20 विश्व कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को। स्मिथ की गेंद ओवर द विकेट, बिल्कुल स्टंप्स के पास से की थी। अब तो इधर उधर दाएं बाएं चारों तरफ रन बन रहे हैं और 100 रन पूरे हो गए ऑस्ट्रेलिया के। दूसरे गेंद पर ये दूसरा सिंगल 10.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 100 रन। लिचफील्ड 26 गेंदों पर और मूनी 43 रन पर खेल रही हैं और लगातार अपने दूसरे अर्धशतक की ओर बढ़ रही हैं। पिछले मैच में 61 बनाए थे उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया सभी सोच रहे थे कि जीतेगी, लेकिन इस तरह से इस अंदाज में जीत जाएंगे इसकी कल्पना नहीं की थी, ये देखते हुए कि इंग्लैंड नहीं छोड़ेगा अपने मैदान पर। और हालिया दिनों में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप रोक तो नहीं सकते। एक और सिंगल मिला है, इत्मीनान से अब ये हो रहा है। और फाइनल मुकाबला है, लॉर्ड्स का मुकाबला है। आप विश्व कप जीतना चाह रहे हैं, जो खेमे में नॉट आउट बैट्समैन बैठे हुए हैं, बैटर्स बैठे हुए हैं, वो सोच रहे होंगे क्या हमें अवसर मिल जाएगा, हम कुछ बैटिंग करके दिखाएं। यहाँ पर स्वीप किया, गेंद कुछ देर के लिए हवा में, लेकिन 4 रन अवश्य मिलेंगे। सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है, अंपायर भी पहले सुनिश्चित करना चाह रहे हैं 4 है अथवा 6 है, प्रतीक्षा करेगा, हर व्यक्ति प्रतीक्षा करेगा। और ये 6 रन,
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: रिवर्स यानी कि उल्टा घूमकर खेला उसको और स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉपिंग क्रीज की सीध में उन्होंने लगा दिया ये 6 रन। और स्मिथ अच्छे अच्छे बैटर्स को छकाया है इस टूर्नामेंट में। आज भारी पड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स उनके ऊपर। 6, 7, 8, 9 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं, 82.5। 11 ओवर समाप्त हो गए, 107 एक विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: 90-run partnership between young Phoebe Litchfield and the experienced Beth Mooney has powered Australia into a position where one feels it's a question of only the formalities now. In how many overs will Australia win this title and how many more wickets can England get, if any? These two are on a mission, and start of a fresh over from Eccleston, lofted over the infield, beautiful shot inside out from Beth Mooney, takes her to 48, 4 more runs.
1: ये लगा आभा का चौका।
5: They're in a real hurry, the Aussie women, batting superbly, and England bowlers have absolutely no answers to how they are going to respond as Australia continue the juggernaut. Nelson on the board, 111 for 1. So most fours in this World Cup. Wyatt Hodge 42, Smriti Mandhana 30, and Beth Mooney now just one shy on 29. Eccleston in again, bowls, and a lovely ball. The arm ball just straightening and beating Beth Mooney. The first time really in this innings that we've seen an England bowler defeat an Australian batter. Beautiful ball, just went past the outside edge. Siva Brunt for a moment thought there might be an opportunity, there wasn't. Mooney waits on 48. Eccleston bowls, worked away to short mid wicket. This is good. Just two or three balls here, but certainly trying to put a little bit of a break on the Australian rate of scoring. They need

0: Much more than that to England. They need wickets in a hurry here. Eccleston bowls. Mooney pushes on the offside. They go off for a single. Two England fielders collide. I think that's the story of England's performance today. Two fielders going for the ball and both of them running into each other. 112 for one now. That was Danny Wyatt-Hodge. 112 for one. From the offside, it was pushed away. And I think that was Freya Kemp and Wyatt-Hodge who ran into each other. 112 for one. The fifth ball of the 12th over. Eccleston bowls and looking for a reverse sweep again was Phoebe Litchfield. Good take by the keeper, Amy Jones, and no runs. 95 of 61 is this partnership, dominating partnership, and Litchfield's done the bulk of the scoring. Eccleston bowls down the leg side, will be called wide, we'll wait for the umpire. Yes, it is. Another wide, another run. 113 for one now, and the last ball of the 12th over has to be re-bowled by Sophie Eccleston, who's gone for 14 runs so far with one ball to come. Reverse sweep attempted, and once again she misses it. She holds her head, does Eccleston, wondering how she hasn't got through. 12 overs complete, 113 for one.
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: तो धीरे-धीरे मंजिल-ए-मकसूद की तरफ कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब स्पष्ट विजेता नजर आ रही है क्योंकि केवल 4.75 के औसत से शेष रन उनको बनाने हैं। 113 एक विकेट पर, कुल 151 चाहिए जीतने के लिए। पहली बार एक्लस्टन की फास्टर बॉल देखने को मिली, पहली बार उन्होंने गति परिवर्तन लिया और उसमें बीट भी किया ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंडर को। बहुत ज़्यादा टर्न नहीं था, अच्छा बाउंस उसको मिला। 92 क्लिक्स की वो गेंद थी, नहीं तो 80 के आसपास की वो करती रही हैं। अब यहाँ से ये आप देखें कि कौन प्लेयर ऑफ द मैच हो सकता है। मामला थोड़ा विकट है क्योंकि चार बॉलर्स ने एक एक विकेट लिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, चार ही विकेट गिरे इंग्लैंड के। दो फील्डर्स के बीच में तेजी के साथ दौड़कर, अच्छा तालमेल, सूझबूझ के साथ सिंगल दौड़ती हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। और इसके साथ ही मूर्नी का अर्धशतक पूरा हुआ केवल 38 गेंदों पर, 50 रन, नौवां अर्धशतक है उनका विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के खिलाफ पहला है और 31st विमेन टी20 इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं उनका अपना ये है जिसमें उन्होंने ये करके दिखाया है। और इस टूर्नामेंट में मूर्नी का तीसरा अर्धशतक है। मूर्नी ने 74 रन बनाए नीदरलैंड्स के खिलाफ, पिछले सेमीफाइनल में 61 रन बनाए होम जी। तो कुल मिलाकर मूनी ही मुझे लग रही हैं मैन ऑफ द मैच होंगी क्योंकि इन्होंने ही शुरू में बढ़िया बैटिंग करके इस मैच को एक तरफा किया। क्यों, बॉलिंग में कोई एक खिलाड़ी आप चुन नहीं सकते। बैट मूनी 38 गेंदों पर 50 रन बनाकर अपने तमाम अनुभव का लाभ अपनी टीम को देते हुए 7, 10, 74, 0, 22 और 61 ये स्कोर्स रहे हैं। वाइड का इशारा वेस्ट इंडीज के अंपायर द्वारा। अब 46 गेंदों पर मात्र 36 रन की दरकार है। लिचफील्ड पलटकर लेग साइड की फील्ड का मुआयना कर रही है, देख रही है कहां फील्डर है। धीमी गेंद को खेलने की कोशिश, जाके टकराई उनसे गेंद। क्या ये कोई ऐसी बात है, क्योंकि गेंद तो काफी सीधी थी लेकिन किसी तरीके का कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है दोनों ही तरफ की टीमों से। शायद कुछ हाइट कम हो या, लेकिन गई सीधी थी, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग थी। अगली गेंद को कलाइयों के सारे सामने की ओर ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास। अब आतुर हैं इस मैच को खत्म करने के लिए। हालांकि शैली शुरू से ही रही है, मुड़कर जब उसको ऑन साइड में खेलना चाहती थी निश्चित रूप से लेफ्ट हैंडर के ऑफ स्टंप को छोड़कर जा रही थी ये गेंद। सर्कल के अंदर गेंद रुकी नहीं, बाउंड्री पे चली गई, बाएं हाथ से गेंद को उठाया जाए तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही है।

0: निपटने पड़ते हैं, लेकिन मामला नजदीक अवश्य है। अच्छा प्रयास था।
1: Yeah, maybe they need to start putting a chip in the cricket ball like the football now.
0: Yeah.
1: To decide whether or not the fielder's touched it. Who knows what technology will do next, Vineet? But at the moment, the umpire now ruled there's no damage done. 125 for two. 14th over in progress. Perry yet to face a ball. Beth Mooney on 58, and Freya Kemp waits. And now the umpire has gone up and signaled for a television replay. What was all of that earlier? I'm not sure. Maybe they just realized that we've got so much time in this game that we might as well get a TV replay and see what happens. We saw about 20 images of that, whether or not the umpire had, the bowler had touched the ball or not. Ellis Perry having a word there with the umpire. Right, now they're going to use ultra edge on the finger.
0: Oh God.
1: Which is not something I have seen before, but it's a fair call. I mean, you have the technology, you might as well use it. And ultra edge certainly looks clean. And what many of us felt earlier, now being confirmed, not out. It almost is like, take no risks. Doesn't matter if the game gets held up. 125 for two. Kemp back into the attack. Bowls to Mooney, who lofts this over the head of mid-off. And four more runs.
2: Ye laga, abha ka choka.
1: Not a very nice thing to say, Vineet, but I'm going to say that I think England also are in a hurry to finish this game. The way they're bowling, there's no fight. The stuffing, as they say, has been taken out of England's bowlers. Really, really ordinary bowling effort. I think it's just a question of formality. Now here's Kemp in again to Mooney, who's moved to 62. Pulls this one round, doesn't get hold of it. Off the pad, over complete. 14 gone, 129 for two.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
5: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: शुरू से ही 10 का औसत रखा बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने, और उसका नतीजा यह है 3.67 की अब आस्किंग रेट रह गई है। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो कितनी 16 वर्षीय बालिकाएं हैं जिनको कि डेब्यू दिया गया है और वो आज बड़े क्रिकेटर बन के तैयार है। न मालूम 15 वर्ष की उम्र का इतना वो क्यों उठाया जा रहा है, इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। सूर्यवंशी हालांकि डेब्यू कर चुके हैं, उनको एक अच्छे गाइड की आवश्यकता है। हर गेंद को सिक्सर नहीं लगाया जा सकता। बड़े खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से, सारे गुण उनमें मौजूद हैं, थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है। 129 दो विकेट पर, ओवर कितने हुए हैं बाटी, 14वां ओवर है, हो चुका है, इसका मतलब ड्रिंक्स मैदान पर हैं, हालांकि हमको नहीं नजर आ रही है। तो खेल तमाम संभावनाओं के साथ शुरू हुआ लॉर्ड्स के इस मैदान पर, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। और बड़ी हसरत के साथ, ऑस्ट्रेलिया पिछली दो बार जीत नहीं सका था, ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ, इंग्लैंड अपने यहाँ कभी हारा नहीं और ऑस्ट्रेलिया को कभी फाइनल में हराया नहीं, लेकिन दोनों ही टीमें विजय रथ पे सवार और परचम लहराती हुई पहुंची, कोई मैच हारी नहीं टूर्नामेंट में। और इसीलिए लगा कि टक्कर का मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा, रोमांचक खेल देखने को मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर हो और वो भी नॉकआउट स्टेज में तो मुकाबले एक तरफे हो जाते हैं। पिच कुछ धीमी कुछ नीची है और अभी भी है, ऐसा नहीं है सेकेंड हाफ में या दूसरी पारी में कुछ बदलाव आया है, लेकिन जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने को एडजस्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। पिच अभी भी कहीं कहीं बीच बीच में नीची हो जाती है, गेंद ग्रिप करती है, रुक कर आती है। पहले 6 ओवर में 62 रन बना डाले ऑस्ट्रेलिया ने, केवल एक खिलाड़ी को खोया और एक खिलाड़ी और खोया 7-14 के बीच में, और 67 रन और जोड़े उन्होंने। शुरू से मूनी हावी रहे, गेंद बॉलर्स के ऊपर उन्होंने जमदार प्रहार किए और बहुत ही शानदार बैटिंग करके दिखाई एक मुश्किल पिच पर। अगर ऑस्ट्रेलिया ये 151 रन बना लेती है आज तो ये बेस्ट एवर रन चेज होगी टी20 के फाइनल में, टी20 के फाइनल में होगी। भारत

0: जब ऑस्ट्रेलिया से खेला तो 171 जो बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को, वो भी रिकॉर्ड था, वो भी रिकॉर्ड चीज थी। लेकिन डीन, चार्ली डीन ऑफ स्पिनर, नए ओवर की शुरुआत करते हुए ऑस्टम के बाहर बीट किया, फ्रंट फुट पे स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, 54 मील प्रति घंटे की रफ्तार की ये गेंद थी और क्रॉस सीम से अच्छी फिरकी दी थी, कोई ड्रिफ्ट नजर नहीं आया। उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर से हवा है लॉर्ड्स के मैदान पर और इस गेंद को खेला बाहरी मोटे सीरीज से लगकर गेंद कवर्स में गई, एक रन बहुत आसानी के साथ ले लिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने। 130 दो विकेट पर यह 15वां ओवर हुआ है जिसकी दो गेंदें अब तक हुई हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी हसरत के साथ दर्शक मैदान पर आए और इनमें जो ऑस्ट्रेलियाई समर्थक हैं उनको निश्चित रूप से हर्ष हो रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया दो अवसर गंवा देने के बाद पिछले सालों में अब फिर T20 का वर्ल्ड कप चैंपियन होने जा रहा है। 34 गेंदे 21 रन, स्टंप्स छोड़कर अलग खड़ी हो गई और फिर उसको ऑफ साइड में खेला, गेंद हवा में थी फील्डर के पास और किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, लेकिन वहां पर गेंद को जब ड्राइव किया था तो एक बार ऐसा लगा कि जैसे कोई कैच की संभावना हो सकती है, लेकिन गेंद को उठाकर रनआउट के लिए थ्रो किया क्योंकि कुछ विलंब के साथ बैटर वहां पहुंच रही थी। काफी बागें निकल गई थी नॉन स्ट्राइकिंग छोर से, अगली गेंद और ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, ऐसे में ही स्टंपिंग्स होती हैं, वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा, कोई संपर्क नहीं बैट से और अब केवल 20 रन चाहिए और एक अतिरिक्त गेंद और करनी पड़ेगी। इनामी राशि 83 करोड़ से भी अधिक है और जीतने वाली टीम को 22 करोड़ से अधिक मिलेंगे, हारने वाली को 11 करोड़ से कुछ ज्यादा। लगातार स्ट्रोक के लिए जगह बना रही हैं और स्क्वायर बैट से खेलने की कोशिश कर रही हैं और हर गेंद पे सिंगल दौड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। फासला कम हो रहा है, 3.56 का औसत चाहिए। 10 चौके लगा चुके हैं मुनी अब तक, लिशफील्ड ने 6 लगाए फिर आउट हो गई, अर्धशतक पूरा नहीं कर सकी। इंग्लैंड जब बैटिंग कर रहा था शिवा ब्रंट ने 5 लगाए थे। डीन की ये अंतिम गेंद, ऊंचा स्ट्रोक खेला ओवर द टॉप फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका
0: और इसके साथ ही ओवर भी पूरा हुआ या गेंद शेष है, एक गेंद शेष है। तो देखिए हौसले की तारीफ करनी होगी, किस तरह से बिल्कुल सुरक्षित स्ट्रोक बॉलर के छक्के छोड़ा दे, ऐसी स्ट्रोक प्ले आपको देखने को मिलेगी और कोई आसान पिच नहीं है, रनों से भरा हुआ पूरा अगर ये पिच हो तो आप समझ सकते हैं इस तरह के स्ट्रोक को। 2-3 स्ट्रोक तो ऑन द राइज खेल के दिखा दिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने इस पिच पर, फिर उस अंतिम गेंद पर एक रन दौड़ रही हैं और स्कोर को पहुंचा रही हैं 137 दो विकेट पर।
2: Ellis Perry on 6 will retain the strike with that single. Beth Mooney is on 63. And now 14 runs is all that Australia need. This has turned out to be a very one-sided final. I must confess this was a fear in some people's minds. And that is why one felt that England had to get an over-par score, which would have meant somewhere in the region of 180, if not more. India's 171 at the Oval in the semi-final turned out to be a very comfortable chase in the end for Australia, in spite of losing a couple of early wickets. So 150 was never going to challenge. And the question that will be asked now is a 53-ball 58 by the England captain, with people like Danny Gibson still left, not even getting a chance to bat. In some ways, very similar to the criticism that Indian batters faced in that semi-final. Eccleston into what is her third over, first ball off the pad, ricocheting and taken by the keeper. Ellis Perry remains on 6. Mooney on 63, very clearly the dominant player throughout this Australian batting innings. Eccleston bowls again, this time Perry works it away nicely on the onside, trots across for a single. Fielder comes in from the deep. 138 now for 2. We're in the 16th over. 13 runs required. It'll be interesting.

0: ऑस्ट्रेलिया का और 16 ओवर का खेल पूरा हुआ। एक तरफा हो गया मैच, लेकिन लॉन्ग रूम से कितनी इच्छा रहती है खिलाड़ियों की इस लॉन्ग रूम से निकलना, इट गेट्स ऑन योर नर्व्स, इतना आसान नहीं होता। क्रिकेट के जानकार, वैभवशाली और प्रतिष्ठित लोगों की नज़र आप पर होती है। ड्रेसिंग रूम ऊपर है, आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए। एशले गार्डनर, क्या खिलाड़ी हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हैं। स्मिथ बॉलिंग करेंगी, सामने है पैरी। पैरी तीन मैचों में क्या प्रदर्शन रहा है, 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच रह चुकी हैं इस वर्ल्ड कप में। बॉलिंग नहीं की आज, मिडल ऑफ स्टंप से इस गेंद को मोड़ा था। अचानक खेल में कुछ शिथिलता आई है, हालांकि वो रेफरल में काफी समय जाया हुआ। गेंद काफी फुल लेंथ की थी, अगली गेंद उसको ड्राइव कर दिया तो फील्डर्स के बीच में से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: अब केवल 7 रन चाहिए, एक छक्का चाहिए बराबरी के लिए। और इनिंग्स के तुरंत बाद आप प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम स्टूडियो से सुन सकेंगे, उसमें बची हुई जानकारी आपको मिलेगी। अगली गेंद को फिर उठाकर खेला, फील्डर के पास जाते ही जाते बुझते हुए जीए की लौ जैसे बढ़ रही है, विकेट मिल गया इंग्लैंड को और आउट हुआ चौथा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का। पेरी ड्राइव कर रहे थे, अपिश ड्राइव मिड ऑफ पर, दायरे के अंदर वो कैच हुई।
2: Good catch by Eccleston there. It was traveling, it was low, it was sharp, but Sophie Eccleston holding on to it. And a late flourish for England in terms of picking up both the set batters. But I think, as they say, little bit too late. Oh, she's still waiting. Maybe the umpire has asked her to wait to check whether the ball was taken cleanly. I suspect they have to fill the time, Vinit. So they have to have reviews.
0: आजकल इतना कुछ लगा रहता है प्रसारण पर, सैटेलाइट्स इत्यादि बुक रहती हैं और विज्ञापनों का और कमर्शियल जमाना है, लेकिन दृश्य उभर रहे हैं सामने मॉनिटर पे कि क्यों उंगलियां नीचे थी या गेंद नीचे थी। वो कैच एक्लस्टन द्वारा सेमीफाइनल में हम देख चुके हैं कि वो 5 फुट 11 इंच की अपने कद का पूरा इस्तेमाल करके ऊंचा कैच तो पकड़ ही लेती हैं, क्या लो कैच भी उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ा है, ये अंपायर इस समय देखना चाहते हैं। उंगलियां नीचे हैं या बीच में से बॉल कहीं स्पर्श कर गई है टर्फ पर, वो इस समय यक्ष प्रश्न है और उसके लिए प्रतीक्षा की जा रही है। पिछले 5-10 मिनट में खेल कम हुआ है, रेफरल्स में ज्यादा जाया हुआ है और ऐसा कोई कांटे का मुकाबला भी नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रक्रिया है जिसको कि आपको निभाना है। नई परिपाटी शुरू हुई है जो आगे भी जारी रहेगी, अब वो ये है कि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर रन आउट बॉलर के हाथ से लग के अगर स्टंप्स पे गेंद जाए तो हाथ से लगी या नहीं लगी वो भी मॉनिटर पे स्निको पे अल्ट्रा एच पे देखा गया, जो हमारे अनुभव में हम लोगों ने तो पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन प्रावधान तो है, प्रावधान नहीं है ऐसा नहीं है, यूं कहना चाहिए। लेकिन अभी भी दिखाया जा रहा है एक्लस्टन का वो कैच मिड ऑफ में दायरे के अंदर, जिसमें वो नीचे एक लो कैच पकड़ने का प्रयास कर रही है, डिसीजन पेंडिंग है और नॉट आउट।
2: अनबिलीवेबल, दिस इज रियली रियली अमेजिंग विनीत, आई कांट एक्सप्लेन।
0: सर ही तो पकड़ लिया एक्लस्टन ने अपने, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी आपत्ति जता रही है, क्या करिएगा, अब आप टीवी मॉनिटर से तो नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसीलिए तीसरा अंपायर बहुत तजुर्बेकार होना चाहिए और वो है, किम कॉटन कोई मामूली अंपायर नहीं है।
2: पॉइंट इज, एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट वी सी ऑन द मॉनिटर इज अ 2-dimensional इमेज, यू नेवर कैन गेट अ 3-dimensional इमेज, एंड द मोर यू शो इट द मोर द डाउट गोज ऑन, एंड दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी हैज टू बी सबॉर्डिनेट टू द गेम, इट कैनॉट लीड द गेम इन माई ओपिनियन, बट हु केयर्स।
0: ऐसा हो जाता है कि कई बार तीसरा अंपायर का जो व्यक्तिगत नजरिया होता है उसका उस लम्हे में जो फैसला होता है वही काम में आता है, और ये अलग अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव है।

0: हर व्यक्ति अलग तरीके से निर्णय ले सकता है। दो फील्डर्स के बीच में जो जगह है वहां से ड्राइव करके इस बार रन मिला है। नाम मात्र को पिछले 15 मिनट में खेल हुआ है।
1: Sorry, Vineet, you know, in the earlier days, before that rule was abolished, there used to be a soft signal from the umpire. I think that was a better way because then you needed conclusive evidence to overturn the umpire's soft signal. But that is no longer the rule.
0: और जब वो soft signal दिया जाता था, मार सुर्खियों में रही ये खबर कि soft signal की क्या जरूरत है, ऊपर भेज ही रहे हैं आप। तो ये चलती रहती है, कश्मकश होती रहती है, ICC नियमों में बदलाव करती चली जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका अब ये आप अनुमान लगा लीजिए कि इतनी दफ़ा और इतने समय तक देखने के बाद भी वो निर्णय से सब संतुष्ट नहीं है। और ये है प्रक्रिया इसीलिए कि आप सही फेयर निर्णय न्यायपूर्वक उसका फैसला कर सकें। और कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ये तो तीसरे अंपायर का अपना नज़रिया था कि उसने आउट दिया और ऐसा होता रहा है। 17 ओवर पूरे हुए, 146 तीन विकेट पर।
1: So it looks like we might be into the last over of the game, Vineet. 146 for 3, 5 runs required. Ellis Perry is on 13, Ash Gardner is on 1, and of course that innings from Beth Mooney of 64 and that partnership with Phoebe Litchfield of 100 runs really setting the tone. 48 to Litchfield, Mooney on 64, both got out just after Australia had stamped their authority. And now it looks like a pure formality. But the fact that the game has gone to 17 overs itself is a bit of a surprise, the way Australia were batting. And who's going to bowl the next over? Looks like it might be Sophie Eccleston, who is going to bowl out. 3 overs, 1 for 17. The best of the England bowlers, really, because if you look at Charlie Dean, 4 overs for 28. Lauren Bell, 3 overs for 28. Lindsay Smith, 4 overs for 30. 146 for 3, 17 overs, lofted over, pulled back in, dragged back in probably is a better way of putting it, limits the scoring to 2, Gardner goes to 3 and the total now 148 for 3, 2 to tie, 3 to win, 7th T20 Women's World Cup trophy awaits Australia and the celebration. Eccleston bowled swept, this one's running down to the boundary, this could be it. 4 runs and Australia have won. So,
2: ये लगा आभा का चौका।
1: So as many had predicted, Vineet, it clearly was Australia's day. They were dominating. They dominated from the beginning, and that marks the end of the Women's T20 World Cup with a win for Australia. Their drought is over. Their 7th title is theirs.
0: बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है जीतना। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की और सबको लग रहा था कि इस पिच में बैटिंग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने आसानी से बैटिंग करके दिखाया। दिक्कत उनको भी हुई, कुछ भाग्य ने भी साथ दिया। शुरू में इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग शुरू की, स्टंप्स पर अटैक किया, धीमी गेंदे की गति में परिवर्तन किए, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। कुल मिला के यही होता है कि नॉकआउट्स में अगर ऑस्ट्रेलिया है और फाइनल और सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया है तो मुकाबला एक तरफा हो जाता है। तो आपको ये बताते हुए कि ऑस्ट्रेलिया ने 2026 का विमेंस का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। लेकिन चर्चा क्रिकेट की जारी रहेगी। आकाशवाणी आपके लिए लाता है क्रिकेट और ढेर सारा क्रिकेट। तो इस प्रसारण के तुरंत बाद आप स्टूडियो से सुनेंगे प्लेयर ऑफ द मैच।
3: प्लेयर ऑफ द मैच